बख्शा गरज ना तुमानों में ताकत भी आई, जो ताकत भी आई तो जुरात भी आई, मोहम्मद जो आए तो रहमत भी आई, जो रहमत भी आई तो दौलत भी आई, जो दौलत भी आई तो बरकत भी आई, जो बरकत भी आई तो नियामत भी आई, मोहम्मद की शान रिसालत भी आई, सरे पुश्त मोहरे नबूवत भी आई, बड़ी बात ये है शरीयत भी आई, विलायत भी आई, करामत भी आई, सारी दस्त दामान ईमान आया, मोहम्मद के आने से कुरान आया कि मोहम्मद

जिसने देखी एक झलक रुकी वो शैदा हो गया, एक नजर पड़ते ही हर बीमार अच्छा हो गया। कैसा ही तूफान हो लेकिन पार बेड़ा हो गया, या मोहम्मद उसका हर गम से कनारा हो गया कि जिसके सर पर आप

खान की बख्शिशे उम्मत पे जब शर्ते शहादत लग गई। मरहबा ए फातिमा के लाल हुसैन इब्ने अली, दे दिया सर।

अपना वाली है वही जो साहिबे मेराज है, जिसकी नालेने मुबारक अर्श की सरताज है। गम के हाथों मेरे मौला जिंदगी का राज है, एक नजर की हस्ती है इबरत फकत मोहताज है, कि तुमने जिस कतरे को भी

चलो दिलों को साफ करो, काबे का तवाफ करो, चलो चलो हज का महीना आ गया, चलो चलो हज का महीना आ गया।

0: छुटकी कहेंगी, अपने आप को बहुत चालाक।
1: देखो रवि, बर्दाश्त की भी हद होती है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे छुटकी मत कहा करो, अब मैं छुटकी नहीं हूँ।
0: अरे मैं तो अब तक बेखबरी था। सच कहती हो पंजाब की रेशमा, अब तुम छुटकी नहीं रही,